सपन साथी धुमधाम राइट सपन नया इभी मेरो टियागो इभी सँग लाइफ छ सुपर फन Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful, get the fun. Go.

0: सोच्दै नि राम्रोसँग बस्नु ल, म त भोलि बाहिर जाँदैछु।
1: ए भोलि माघे नि मेला लाउँदैछ, रमाइलो गरेर जानु नि सुल्तीज्यू।

0: मसुन तक माया लुहावा चलता। 16-17 को उमेर में जोबन को लहर चलता। कसे कसे ले तीतो मीठो ब्याधर तो दिए के होलन है ना। हो ती आधर नहीं हुन कुसुमे रुमान छादायो
1: आयो
0: तकाने सामी सिते।

0: मेरे कदम मेरे कदम।
1: किसी को हो न हो मगर हमें तो है पता।
0: न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा,
2: मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा
0: के धूप में खिला है चार।

0: न बोले तुम न मैंने कुछ कहा
1: कहा
0: कहा
1: कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा
0: लगा
1: लगा
0: लगा के धूप में खिला है चांद दिन में रात हो गई
1: चांद की

आजकल एआई वॉइस फेक वीडियो को माध्यम छगी करने डिजिटल लेंडिंग भन्द झूठो लोन एप बनाकर स्कैमिंग करने क्रिप्टो र इन्वेस्टमेंट ट्रैप फेक बैंक सर्वे व अफर को माध्यम ठगी करने ठगर को बिगबिगी बढ़े होना इसका ठगर सावधान रहो कुछ समस्या पड़े में वा आपू ठगी बैंक में वा नजिके को प्रहरी में खबर करो वित्तीय तथा विद्युतीय माध्यम को कारोबार को सचेतना का लागि स्थानीय बैंक द्वारा जारी